दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: किशोर इन्टरप्राइजेस तपाईंकै सेवामा सधैं तत्पर।
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

एक पटक भोटेकोशी बाढ़ी पछि को खोज तथा उद्धार स्थगित करने सरकार को निर्णय प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना को काम तीन तह का सरकार को समन्वय में अगि बढ़ाने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को भनाई नेपाली कांग्रेस को बंद सत्र में राजनैतिक लगायत विभिन्न प्रतिवेदन में समूहगत छलफल बंद सत्र विधान पारित कांग्रेस को नया कार्य समिति का लागि असोज 22 गते मतदान हुने र यस वर्ष को चिकित्सा शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार मस्तिष्क को स्नायु कोष को गतिविधि बारे अनुसंधान गर्दै आउनुभएका तीन वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने यसका साथै साँझ 7 बजे को समाचार सकियो अब अर्को समाचार 8 बजे अंग्रेजी में सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार।